0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक एक बजे को था।
1: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

0: बनाउली म आफ्ना बैरागले गाउँछु बस आछ बनाउली
1: काटे सागो चुनुक चुनुक जुत्ता भड्कुनाले मेरा साई पराया भया।

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 व्यक्ति 2.7 मेगाहर्ट्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी